दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, यादें बड़ी सुहानी होती है, लेकिन कुछ यादें भूल ही जाए तो अच्छा होता है, ऐसे भी आलम होते हैं, इसलिए कभी कभी भूलना भी अच्छा होता है। तो चलिए आज सुनते हैं कुछ भूले बिसरे गीत, पर जिन्हें भुलाना आसान नहीं, क्योंकि ये सुहाने गीत इस तरह से हमारी यादों का हिस्सा बने हैं, ऐसे जैसे कि जिंदगी का अटूट हिस्सा हो।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म संजोग से, गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। भूली हुई दास्तां, भूली हुई यादें फिर से आती हैं तो जी बेकरार हो जाता है। जिन्हें भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? वो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, फिर भी यादों में ऐसे बसे हैं कि कमबख्त जाते ही नहीं।

0: दिल ने पुकारा, मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आबरू से, गाया था मुकेश ने, गीतकार थे जीएल रवेल, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों, भूली हुई दास्तानें सताती हैं जब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनती है तो पूरी जिंदगी ही बन जाती है। किसी को सामने देखकर जहां भुला देती है, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत है फिल्म जूली से, गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया।

दिल ने पुकारा में अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत सुना जो शायद कभी भुलाया जाए। कुछ गीत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, जैसे कि पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, इस पहली तनख्वाह से ली गई चीजें, पहली गाड़ी, पहला खुद का घर, पहला एरोप्लेन का सफर, पहली ट्रिप और न जाने क्या क्या। दोस्तों, लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है तो क्या मैका भूल जाती है? कभी नहीं। पर देखिए, एक ये बड़ा ही सुहाना

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हर लड़की अपनी माँ का घर भूलकर ससुराल में इतनी घुल मिल जाती है, इसलिए तो ये भारतीय संस्कृति विवाह का ये अटूट बंधन चलता आ रहा है। ये रीति रिवाज, ये रस्में निभाई जाती है सदियों से, और यही आगाज रहे तो शायद चलते ही रहेंगे ये बंधन, ये रस्म और रीति रिवाज सदियों तक। शायद ये बंधन इसलिए भी टिके हैं कि कोई किसी को भुला देता है।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म सट्टा बाजार से, गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और हम कुछ भूले बिसरे सुहाने गीत सुन रहे हैं। दोस्तों सारी संजोग की बातें हैं, कोई किसी को भुला देता है, कोई किसी को याद रखता है, कोई संस्कृति के पथ पर चलकर समाज व्यवस्था को संजोए रखता है और हम और आप उन्हीं में से एक जरूर है। तो ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे फिल्म साथी का ये गीत, गाया है मुकेश ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद। तो दोस्तों ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बड़े ही विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम आज आए हैं लीगल शील्ड के विल स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, महेंद्र एकबोटे जी का जो ये विल स्टूडियो है, क्या है ये विल स्टूडियो का मतलब क्या है?
1: ये विल स्टूडियो हमने इसीलिए बनाया हुआ है। कई बार ऐसा देखा गया है कोर्ट में विल्स चैलेंज होते हैं। विल चैलेंज करने के लिए दो तीन ही पॉइंट्स होते हैं। एक, या तो फिजिकल मेंटल कंडीशन में नहीं था जिसको विल करनी थी। सेकंड, विटनेस सही नहीं थे। ठीक है, तो जिसको कम मिलता है वही जाके कोर्ट में ये चीजें चैलेंज करता है। वहां पे वो झूठे एलिगेशन लगाता है कि ये पॉइंट्स ग्राउंड्स पे ये गलत था। तो ये चीज एक हमने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, जो 100% प्रूफ हो कि जिसने विल बनाई है वो मेंटली फिजिकली कंडीशन में थे। विल स्टूडियो में हम लोग उसका वीडियोग्राफी बनाते हैं। ये मुझे प्राउड होता है बोलते हुए कि वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो ये वीडियोग्राफी करके दे रहा है।
0: क्या बात है।
1: इसमें हम लोग क्लाइंट को, वो उनकी वाइफ और विटनेस ऑफिस में, यहाँ पे ये सेटअप में बुलाया जाता है, उनके सामने उनको उनके सवाल पूछे जाते हैं जो कोर्ट में पूछे जाएंगे।
0: कैसे होते हैं वो सवाल?
1: कि ये विल आप कौन से डेट पे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किसको देना चाहते हो, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद उनकी वाइफ का नाम पूछा जाता है, फिर विटनेस को पूछा जाता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। विटनेस ये बताता है कि हम यहाँ पे इस विल के लिए विटनेस, एज अ विटनेस हम लोग आए हैं, ताकि ये एक प्रूफ होता है। ये पूरा जो भी बात होती है ये वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड होता है, और ये वीडियोग्राफी वो वन गो में होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। जो एंगल ना चेंज होता है, जूम ना होता है, वन गो में पूरा शॉट लिया हुआ रहता है। क्यों? इससे ये प्रूफ होता है कल अगर हम लोग ये एविडेंस कोर्ट में भी देंगे तो इसका 100% मेंटेनेबिलिटी होता है। इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग जो भी किया हुआ है वो दैट इज द प्रूफ के आई वॉज इन मेंटली एंड फिजिकली गुड कंडीशन। किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती करके साइन नहीं लिया है, कोई उस चीज पे कल चैलेंज वो विल पे कोर्ट नहीं कर सकता है।
0: क्या विटनेस भी उतना ही जरूरी है उसके लिए?
1: हाँ, विटनेस जरूरी है, क्योंकि वो साक्षीदार क्यों होता है, क्योंकि पता है आप मेंटली फिजिकली कंडीशन में हो, आपने मेरे सामने किया है एंड मैं उस चीज की गवाह हूं, इसीलिए विटनेस इंपॉर्टेंट होता है।
0: क्या रिश्तेदार भी गवाह हो सकते हैं?
1: हो सकते हैं।
0: क्यों ऐसे जरूरी है कि मैं विल बनाऊं? विल यानी करने के बाद में, मैं अगर मर गया तो बाद में मेरे इसका क्या ये है, वजूद है, तो कोई जरूरत नहीं है ना?
1: सर, विल जो आपने करी है वो आपके जाने के बाद आपकी आवाज है। ठीक है, जो भी आपने बनाया हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी बोलो, जो भी आपने आपकी जो जमा पूंजी है, आप जिनको देना चाहते हो, कोई ऐसा बच्चा होता है जो ज्यादा प्यार वाला होता है, जिसने संभाला होता है, तो आप उसको ज्यादा देना चाहते हो, या जो कम ये है आपके चॉइस के हिसाब से, आप जिनको भी कम ज्यादा देना चाहते हो, आपके जाने के बाद ये आपकी आवाज है, वो आवाज प्रॉपर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो, इसकी वजह से विल करना इम्पोर्टेंट।
0: बहुत ही अच्छा आपने बताया। जैसे आपने अभी बताया विल के बारे में, विल स्टूडियो के बारे में
1: जी।
0: और आपने बताया कि पूरे इंडिया में पहला ये कंसेप्ट है
1: जी,
0: जो हमने नासिक में शुरू किया है।
1: हाँ जी।
0: तो क्या आपको नासिक के बाहर से भी क्लाइंट मिलते हैं?
1: हाँ, मिलते हैं।
0: अच्छा,
1: हमको बाहर के भी क्लाइंट मिलते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, NRIs भी जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में है वो भी हमारे क्लाइंट।
0: बहुत ही अच्छा। ये कंसेप्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं?
1: लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक ही है कि हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं क्यों विल इम्पॉर्टेंट है। उस चीज के लिए आप कोई भी चीज, जैसे इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली सिक्योर रहे, वैसे ही विल मेरे जाने के बाद वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसीलिए विल करना इम्पोर्टेंट।
0: बहुत ही अच्छा। प्रियंका जी, आपने विल स्टूडियो के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, ये थी लीगल शील्ड से जो विल स्टूडियो ये कंसेप्ट आया हुआ है, जो महेंद्र जी एकबोटे ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और जैसे प्रियंका जी ने बताया कि पूरे इंडिया में ये ऐसा कंसेप्ट है कि जो पहली बार अपने यहाँ नासिक से आया हुआ है। तो ऐसे ही विषयों के लिए हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, यादें बड़ी सुहानी होती है, लेकिन कुछ यादें भूल ही जाए तो अच्छा होता है। ऐसे भी आलम होते हैं, इसलिए कभी कभी भूलना भी अच्छा होता है। तो चलिए आज सुनते हैं कुछ भूले बिसरे गीत, पर जिन्हें भुलाना आसान नहीं, क्योंकि ये सुहाने गीत इस तरह से हमारी यादों का हिस्सा बने हैं, ऐसे जैसे कि जिंदगी का अटूट हिस्सा हो।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म संजोग से, गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। भूली हुई दास्तां, भूली हुई यादें फिर से आती हैं तो जी बेकरार हो जाता है। जिन्हें भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? वो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, फिर भी यादों में ऐसे बसे हैं कि कमबख्त जाते ही नहीं।

दिल ने पुकारा, मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आबरू से, गाया था मुकेश ने, गीतकार थे जीएल रवेल, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों, भूली हुई दास्तानें सताती हैं जब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनती है तो पूरी जिंदगी ही बन जाती है। किसी को सामने देखकर जहां भुला देती है, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत है फिल्म जूली से, गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।

दिल ने पुकारा में अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत सुना जो शायद कभी भुलाया जाए। कुछ गीत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, जैसे कि पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, इस पहली तनख्वाह से ली गई चीजें, पहली गाड़ी, पहला खुद का घर, पहला एरोप्लेन का सफर, पहली ट्रिप और न जाने क्या क्या। दोस्तों, लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है तो क्या मैका भूल जाती है? कभी नहीं। पर देखिए, एक ये बड़ा ही सुहाना

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हर लड़की अपनी माँ का घर भूलकर ससुराल में इतनी घुल मिल जाती है, इसलिए तो ये भारतीय संस्कृति विवाह का ये अटूट बंधन चलता आ रहा है। ये रीति रिवाज, ये रस्में निभाई जाती है सदियों से, और यही आगाज रहे तो शायद चलते ही रहेंगे ये बंधन, ये रस्मों रीति रिवाज सदियों तक। शायद ये बंधन इसलिए भी टिके हैं कि कोई किसी को भुला देता है।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म सट्टा बाजार से, गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और हम कुछ भूले बिसरे सुहाने गीत सुन रहे हैं। दोस्तों सारी संजोग की बातें हैं, कोई किसी को भुला देता है, कोई किसी को याद रखता है, कोई संस्कृति के पथ पर चलकर समाज व्यवस्था को संजोए रखता है और हम और आप उन्हीं में से एक जरूर है। तो ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे फिल्म साथी का ये गीत, गाया है मुकेश ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद। तो दोस्तों ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बड़े ही विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम आज आए हैं लीगल शील्ड के विल स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, महेंद्र एकबोटे जी का जो ये विल स्टूडियो है, क्या है ये विल स्टूडियो का मतलब क्या है?
1: ये विल स्टूडियो हमने इसीलिए बनाया हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है कोर्ट में विल्स चैलेंज होते हैं। विल चैलेंज करने के लिए दो तीन ही पॉइंट्स होते हैं। एक, या तो फिजिकल मेंटल कंडीशन में नहीं था जिसको विल करनी थी। सेकंड, विटनेस सही नहीं थे। ठीक है, तो जिसको कम मिलता है वही जाके कोर्ट में ये चीजें चैलेंज करता है। वहां पे वो झूठे एलिगेशंस लगाता है कि ये पॉइंट्स ग्राउंड्स पे ये गलत था। तो ये चीज एक हमने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, जो 100% प्रूफ हो कि जिसने विल बनाई है वो मेंटली फिजिकली कंडीशन में थे। विल स्टूडियो में हम लोग उसका वीडियोग्राफी बनाते हैं। ये मुझे प्राउड होता है बोलते हुए कि वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो ये वीडियोग्राफी करके दे रहा है।
0: क्या बात है।
1: इसमें हम लोग क्लाइंट को, वो उनकी वाइफ और विटनेस, ऑफिस में यहाँ पे ये सेटअप में बुलाया जाता है, उनके सामने उनको उनके सवाल पूछे जाते हैं जो कोर्ट में पूछे जाएंगे।
0: कैसे होते हैं वो सवाल?
1: कि ये विल आप कौन से डेट पे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किसको देना चाहते हो, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद उनकी वाइफ का नाम पूछा जाता है, फिर विटनेस को पूछा जाता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। विटनेस ये बताता है कि हम यहाँ पे इस विल के लिए विटनेस, एज ए विटनेस हम लोग आए हैं, ताकि ये एक प्रूफ होता है। ये पूरा जो भी बात होती है ये वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड होता है, और ये वीडियोग्राफी वो वन गो में होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, जो एंगल ना चेंज होता है, जूम ना होता है, वन गो में पूरा शॉट लिया हुआ रहता है। क्यों? इससे ये प्रूफ होता है कल अगर हम लोग ये एविडेंस कोर्ट में भी देंगे तो इसका 100% मेंटेनेबिलिटी होता है। इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग जो भी किया हुआ है वो, दैट इज द प्रूफ के आई वॉज इन मेंटली एंड फिजिकली गुड कंडीशन। किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती करके साइन नहीं लिया है, कोई उस चीज पे कल चैलेंज वो विल पे कोर्ट नहीं कर सकता है।
0: क्या विटनेस भी उतना ही जरूरी है उसके लिए?
1: हाँ, विटनेस जरूरी है, क्योंकि वो साक्षीदार क्यों होता है, क्योंकि पता है आप मेंटली फिजिकली कंडीशन में हो, आपने मेरे सामने किया है एंड मैं उस चीज की गवाह हूं, इसीलिए विटनेस इंपॉर्टेंट होता है।
0: क्या रिश्तेदार भी गवाह हो सकते हैं?
1: हो सकते हैं।
0: क्यों ऐसे जरूरी है कि मैं विल बनाऊं? विल यानी करने के बाद में मैं अगर मर गया तो बाद में मेरे इसका क्या ये है, वजूद है, तो कोई जरूरत नहीं है ना?
1: सर, विल जो आपने करी है वो आपके जाने के बाद आपकी आवाज है। ठीक है, जो भी आपने बनाया हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी बोलो, जो भी आपने, आपकी जो जमा पूंजी है, आप जिनको देना चाहते हो, कोई ऐसा बच्चा होता है जो ज्यादा प्यार वाला होता है, जिसने संभाला होता है, तो आप उसको ज्यादा देना चाहते हो, या जो कम ये है आपके चॉइस के हिसाब से, आप जिनको भी कम ज्यादा देना चाहते हो, आपके जाने के बाद ये आपकी आवाज है, वो आवाज प्रॉपर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो, इसकी वजह से विल करना इंपॉर्टेंट।
0: बहुत ही अच्छा आपने बताया। जैसे आपने अभी बताया विल के बारे में, विल स्टूडियो के बारे में
1: जी।
0: और आपने बताया कि पूरे इंडिया में पहला ये कंसेप्ट है
1: जी,
0: जो हमने नासिक में शुरू किया है।
1: हाँ जी।
0: तो क्या आपको नासिक के बाहर से भी क्लाइंट मिलते हैं?
1: हाँ, मिलते हैं।
0: अच्छा,
1: हमको बाहर के भी क्लाइंट मिलते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, NRIs भी जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में है वो भी हमारे क्लाइंट।
0: बहुत ही अच्छा। ये कंसेप्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं?
1: लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक ही है कि हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं क्यों विल इम्पॉर्टेंट है। उस चीज के लिए आप कोई भी चीज, जैसे इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली सिक्योर्ड रहे, वैसे ही विल मेरे जाने के बाद वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसीलिए विल करना इम्पॉर्टेंट।
0: बहुत ही अच्छा। प्रियंका जी, आपने विल स्टूडियो के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, ये थी लीगल शील्ड से जो विल स्टूडियो ये कंसेप्ट आया हुआ है, जो महेंद्र जी एकबोटे ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और जैसे प्रियंका जी ने बताया कि पूरे इंडिया में ये ऐसा कंसेप्ट है कि जो पहली बार अपने यहाँ नासिक से आया हुआ है। तो ऐसे ही विषयों के लिए हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।